0: Radio.
1: हो जमला जट मु महल ते जमला जट मु महल ते आ लो कुछ फरमांदा अगंत पे आप तो मेरे ओ मैं हुन नहीं गांदा जमला जट मु महल ते हो जमला जट मु महल ते। सत श्री अकाल दोस्तो, मैं तुहाडा अपना काशीनाथ, तुसी सुन रहे हो दुआबा रेडियो, तुहाडी अपनी आवाज़।

आएगी इन काली सदियों के सर से, जब रात का आंचल ढलकेगा, जब दुख के बादल पिघलेंगे, जब सुख का सागर छलकेगा, जब अंबर झूम के नाचेगा,

0: आएगी वो सुबह कभी तो आएगी।
1: जिस सुबह की खातिर जुग जुग से हम सब मर मर के जीते हैं, जिस

नहीं, मिट्टी का भी है कुछ मोल, मगर इंसानों की कीमत कुछ भी नहीं। इंसानों की इज्जत जब झूठे,

0: हाँ जी पाजी, बिल्कुल
1: बहुत खूब जी, क्या ही बता जी, बाटमाल बाटमाल, बहुत ही
0: पाजी वो
1: खूबसूरत
0: मुंडे का
1: सॉन्ग
0: नाच
1: है।
0: आया यार, मैनू नहीं आया वो मुंडे का नाच, जो एक्सीडेंट की डेथ हुई सी जी,
1: देखो
0: बहुत
1: मैनू भी
0: प्यारा
1: याद नहीं
0: मुंडा
1: आया,
0: सी।
1: तो उधर विनोद संधू जी कहते जी एदे लिए अखरोट खाने पैणगे, नहीं बादाम शायद।
0: सानू सर्जरी करनी पड़ेगी, व्यापार करना पड़ेगा, हुण असीं पाकिस्तान ते लियावांगे जां अफगानिस्तान ते, जदों भारत माला चलूगी। भारत माला बन रही है, बहुत शहीदियां हुईयां ने, लोक लड़ लड़ के अपने खेत बचाण लई बहुत कुछ कर रहे ने,
1: संघर्ष है जी,
0: ते
1: बिल्कुल
0: पर हांजी हांजी, ते ओ फिर हुण अखरोट ओदो ही खावांगे जो सस्ते होणगे।
1: जी, बिल्कुल जी, बिल्कुल।
0: हांजी एक गीत विच भाजी अलाप लेना मैं भुल गई, चलो फिर
1: नहीं
0: नेक्स्ट टाइम
1: अलाप
0: जी मैं ऐसी
1: तुसी हुण भी
0: सजा
1: अलाप लै सकते हो।
0: अलाप भी पूरा नहीं।

जेड़ा कपड़े करे करोड़ा बिच बसे ओनू लीडर मन देने। पेन बैंक च दो रुपया दा जेनू तागे दे नल बन देने। जिथे रब कर संगता जुतियानू, जिथे रब कर संगता जुतियानू।

0: दिन रात मेहनत कर दे हां मजदूर पक्की सरकारां होण जे फिर खुदकुशियां क्यों कर दे हां। कुलवंत हक्कां नूं समझे ना कोई, कुलवंत हक्कां नूं समझे ना कोई, ताइयों हक्कां दे लई लड़दे हां। ऐ जिंदगी असी मजदूर तेरे जिउण लई मेहनत करदे हां, जिउण लई मेहनत करदे हां।
1: प्यारे श्रोतेओ, तुसी हुणे ही कुलवंत सिंह सैदोक जी दी कविता जिंदगी असी मजदूर तेरे सुन के हटे हो। ते हुण मैं तुहाडे सन्मुख पेश करन दी खुशी ले रहा दिलशाद अली जी नूं। दिलशाद अली जी जिहड़े पंजाबी दे नवे उभर दे गायक हन, ते ओ बहुत वधिया सुरीली आवाज दे विच अपने गीत जिहड़े पेश करदे ने। साडी अज दी इस गाउंदी शाम दे विच ओ एक रचना लेके हाजिर हो रहे ने, करके मैनू याद रोया करेंगे। आस करदे हां कि इस रचना नूं तुसी पूरा माणोगे, ते जिन्हां दे दिलां दी गल उन्हां ने कीती आ ओह गल भी उन्हां तक पहुंच जाएगी। ते क्योंकि रोया किसे नूं दिल तो ही जा सकदा है, हसण वेले तां बंदा ओपरा भी हस सकदा है, पर रोण वेले उपरों नहीं रोया जा सकदा, सिर्फ दिलों रोया जांदा है। जदों हाय कही जांदी है जां रोया जांदा है, ओह सिर्फ रूह तों, दिल तों ते दिमाग तों रोया जांदा है। ते दिलशाद अली जी साडे स्रोतियां लई अपना कलाम लैके हाजिर ने। दिलशाद अली जी, तुहाडा दुआबा रेडियो दी गौंदी शाम दे विच निघा स्वागत है।
2: रचना गजल कुछ इस प्रकार है दोस्तों। करी करी के मैनू याद रोया करेंगी तू, करी करी के मैनू याद रोया करेंगी तू, पलकां नूं हंजुआं दे नाल पिगोया करेंगी तू, करी करके मैनू याद रोया करेंगी तू, हाय करी करके मैनू याद। बदलां दे विच, बदलां दे विच चन जदों मुस्कुराएगा, बदलां दे विच चन जदों मुस्कुराएगा, चेहरा मेरा फेर तैनू

जुबां से जो दिल ही दुखाता रहे, जुबां से जो दिल ही दुखाता रहे, उसका जीवन तो है एक।

अड़या लोक मार देता ने वे, जो सी पीड़ पराई असी अपने तन ते ला बैठे। तेरी खातर सजना असी जग नाल मत्था ला बैठे। छोटी उम्रे अखियां लाइया लगे रोग अवले, मीडिया खुल के गले च लटकन लोक आख दे चले। तेरे तीर ही जर दे सजना, तेरे तीर ही जर दे सजना, असी अपने सीने खा बैठे। तू की दर्द नू जाने, असी बहुता दर्द हंडा बैठे। जिस

चुप चाप पई दिसी एक पक्षी सी, माने बोये कोल सांब के जो रखी सी। पखे बिजली देने पैरां विच रोलिया संदूक।

सब दरिया खेस घबराए सी, वेलां बूटे माने चावां नाल पाए सी। गद्दे बैड देने पैरां च मदोलिया, संदूक मां दा जदों सी मैं खोलिया।